याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसव मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।

0: हेतलियानी हमाला दिले वेने ई खाती हाले हमाला दिले आले खातियाला हे के त्रियाला बाहाले हेतले
1: सीएल वासुते बाड़ा खड़ा रवाली बाहे मेने ले
2: हेतलियाला हेतलियाला
1: सोए नवतल दिए नाशुते बाला यीशु स्वाहा से के नाम में बोले आओ
2: बेखे नामा खातिला वेतेरे बे
1: ये हमाला के दिया ले हमारे वेतेरे
2: बे दे दे नवाहतिला हालेलुया
1: केतलिया माला माती हाना हेले केतली हाँ मेले अमातिलिया ले ओबरे सुधी वेवा स्वामी इन बात ओबात सिउदा उकरान लेकिन एक